एक खूबसूरत विचार है आपसे शेयर करना है। खुश रहने के लिए सब कुछ अच्छा होना जरूरी नहीं, बस जो अच्छा है उसे दिल से महसूस करना जरूरी है।

0: सुबह का सूरज जब धीरे धीरे ऊपर उठता है तो उसकी किरणें हर जगह पहुंचती हैं। वो ये नहीं देखती कि कौन सा घर बड़ा है और कौन सा छोटा। उजाला सबके लिए होता है और शायद अच्छाई भी ऐसी ही होनी चाहिए। हमारी मुस्कान, हमारे अच्छे शब्द और हमारा अपनापन किसी एक व्यक्ति तक सीमित क्यों रहे।
1: कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ?
2: सेवा के बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल मुझे एक नहायत स्पेशल किस्म का बुके चाहिए।
1: स्पेशल बुके लड़के के लिए चाहिए या लड़की के लिए?
2: इससे आपको मतलब?
1: जी मुझसे तो नहीं, लेकिन फूलों का फूलों से मतलब है। आई मीन हर फूल हर जगह नहीं भेजा जा सकता।
2: जी
1: जी हाँ, रंग और खुशबू का अपना एक मिजाज होता है, उसका एक करैक्टर होता है। फूलों में भी सनाना और मर्दाना फूल हुआ करते हैं। अब देखिए ना, मर्दों को सनाना और औरतों को मर्दाना फूल भेज जाते।
2: समझ गए, ये बुके एक लड़के के लिए है।
1: ओह दैट्स फाइन। अच्छा ये बताइए कि वो लड़का आपको क्या लगता है? देखते बुरा मत मानिए, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर वो भाई है तो फूल अलग होंगे और वो फ्रेंड है तो फूल दूसरे होंगे, अगर वो बॉयफ्रेंड है तो फूल नेचुरली तीसरे होंगे। क्या राय आपकी?
2: ओह माय गॉड, वो ना भाई है ना फ्रेंड है ना बॉयफ्रेंड। और कुछ पूछना है आपको?
1: जी नहीं, इतना बहुत है। आप एड्रेस छोड़ जाइए, मुके पहुंच जाएगा।

दोस्तों, हर इंसान की आंखों में कोई ना कोई सपना ज़रूर होता है। किसी को अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखना है तो कोई अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन चाहता है और कोई बस मन का सुकून तलाश रहा है। सपने अलग हो सकते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने का रास्ता एक ही है। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना बस इतना ज़रूरी है कि आप कल से एक कदम आगे हों। सुबह हमें बस यही सिखाती है।

आज की सुबह जाते जाते बस यही कहूंगी, सूरज की तरह रोशन रहिए, हवा की तरह सहज रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए और नदी की तरह आगे बढ़ते रहिए। इसी खूबसूरत सोच के साथ अब आपसे अर्चना गोयल विदा लेना चाहेगी। नमस्कार।

0: द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
3: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिस कर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्यवाही को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
4: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण में एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यहाँ पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री दहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: भोपाल में आज MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6-लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6-लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रुपए, राजगीर के लिए 4000 रुपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रुपए और कैमूर के लिए 6000 रुपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
7: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मूज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नव भारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, 1 लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का SIR ब्यौरा अनिवार्य, दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका

0: Apex Court seeks status report from the SIT probing alleged misappropriation of donations in Ram Janmabhoomi Temple. President Draupadi Murmu takes cognizance of matter regarding Jharkhand workers affected by ammonia gas leak in Tamil Nadu, directs immediate action. Mortal remains of 15 Indians who died in Vietnam boat tragedy to be brought back home tonight by a Vietnam Airlines flight. Iran strikes U.S. military bases in Jordan, Bahrain and Kuwait in retaliation to U.S. attacks on its military targets. And in women's cricket, hosts England to resume their second innings at 130 for 6 against India in historic one-off test at the Lord's. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है।

0: सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरि है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6th नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि INS महेंद्रगिरि को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म INS दुनागिरि, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है, जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का 3रा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
3: अपने 2 वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे कुछ नहीं हुआ है। अब मध्यप्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां ने FDI के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के

0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिएगा कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने हुर्मुज़ जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले हुर्मुज़ जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदे नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
0: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
2: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था, इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
0: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद NR प्रसाद जी और अखिला जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
2: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद और ज्ञानवर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
2: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाए तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी
0: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
2: श्रोताओं इसका जवाब जान लेते हैं। मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
0: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
0: जी, हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
2: जी इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
0: जी अश्रोताओ, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
2: जब हम किसी

0: पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
1: जी तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कंगारू के कितने पैर होते हैं?
1: 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
2: हमारे घर के सारे सामान
3: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल
4: बह गई।
5: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता। वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
6: लो भाई, पहुंच गए सरितपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
4: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
6: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
5: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
6: अरे
7: मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
5: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
2: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
5: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
8: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
9: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं
10: और पैसे कमाने हैं।
5: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते उफ इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
11: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
12: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
5: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
13: हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
14: लगता है नदी क्रोधित हो गई है।
13: क्या?
3: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे
14: फसल बह गई।
13: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा, सारा सामान उसी में तो ऊपर ले जाना होगा।
14: चलो जल्दी ऊपर।
13: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो चलो जल्दी चलो
14: चलो चलो।
13: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
14: ध्यान से संभल कर।
5: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जलस्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
15: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा। शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता। मैं ही जीवन हूं धरती का, मुझे नष्ट मत करो। मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहाँ निकल गई है तू? अकेले जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यहीं तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ,
2: हाँ। सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती, अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
1: किन्दौरी।
3: हाँ चाची।
1: और हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी। अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है।
3: आ रही हूँ चाची।
1: हाँ चाची।
4: क्या है चाची?
1: अरे क्या हुआ?
4: कोई घबराने वाली बात नहीं है री।
1: हाँ? वो गौरा कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
4: हाँ? छत्ते? क्या मतलब?
1: हाँ हाँ छत्ते, वो भी दो तीन नहीं, बड़े बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं। हाँ
4: सात आठ छत्ते, कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
4: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी भर तो हो ही जाएगा। अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
3: छप्पर फाड़ गए।
4: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
5: क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दातुन भी तोड़ लेंगे।
3: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
4: हाँ ठीक है, चल चलते हैं।

0: तो ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है। अरे, लगता है कोई पेड़ काट रहा है। मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा। अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाजें ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो खाकी पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है। राम, ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
2: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं जो पेड़ काटने आए हैं।
1: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
2: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
1: हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।
2: मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं। अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है।
1: हाँ, ठीक है।
2: मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं।
1: ठीक है।
2: मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं।
1: अच्छा।
2: वो रास्ता छोटा लगेगा।
1: हाँ, हाँ,
0: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही, दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।

0: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
1: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना, हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
0: हाँ, ठीक है, ठीक
2: है। मगर ये औरतें और बच्चे।
1: अरे यार मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी।
0: हाँ, हाँ, बचाएंगी। हाँ,
1: नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा।
0: ठीक है।
1: अरे कोई है? अरे बाहर निकलो। चाची।
3: हाँ क्या बात है?
1: बुआ जल्दी बाहर आओ, शहर के लोग हमारा जंगल काट रहे हैं।
0: क्या जंगल? जल्दी आओ।
4: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे। सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
1: सुनो, वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं।
5: बिल्कुल,
1: इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।
0: लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है।
1: अरे डरो मत, भाग कर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए ताकि ये पेड़ न काट सके। भागो, चलो पकड़ लो प्राणों को। अरे हटो, हथियार लो।
6: अरे अरे हटो, अरे
1: ये कुछ नहीं कर सकते। आप हम पेड़ों से चिपक गई हैं। अब चलाओ कुल्हाड़ी।
6: मैं देखता हूँ सबको बड़ी बहादुर बनती है।
1: हम जान दे देंगे, मगर पेड़ों को नहीं छोड़ेंगे। अरे देखते क्या हो, चलाओ कुल्हाड़ी। अरे शिब्बा, तू तो हमारे गांव का ही है, मार अपनी बहनों को।
6: अरे साथियों देखते क्या हो, आगे बढ़ो और ये पकड़कर पेड़ों से अलग कर दो। अच्छे बोला ये देवर, ये आगे बढ़ो, आगे चलो,
4: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
7: चिब्बू भाग ले यहां से,
8: बाद में मामले काटने के।
4: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
9: वाह भैया, गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया।
10: ऐसी चिपकी पेड़ से किसने छोड़ा ही पेड़ को। अरे
1: सबका कर्तव्य है।
4: दोस्तों इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
11: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
12: और विमलेश को
11: कुसुम लता
12: जगबंधु
11: चेतना
12: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
11: नमस्कार, नमस्कार।
13: उमंग उमंग उमंग उमंग।
14: ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಐಆರ್ 2026 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 29ರವರೆಗೆ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮಗೆ ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ನೀಡಿ ತಮ್ಮಿಂದ ಸಹಿ ಪಡೆದು ಸ್ವೀಕೃತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

0: प्रदानाय आरब्धा अस्ति।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: योजनायाः प्रथमे चरणे पटना, वाल्मीकिनगरम्, मातामुण्डेश्वरे, राजगीर इत्येतानि स्थानानि समाविष्टानि सन्ति। राज्यप्रशासनं प्रत्येकस्मै यात्रानुमतिपत्राय 22,400-15,000 रूप्यकाणि यावत् अनुदानं प्रदास्यति। उदग्रयानपर्यटनसेवा जुलाई मासस्य 18 दिनाङ्कादारभ्य प्रत्येकस्मिन् शनिवासरे रविवासरे च संचालिता भविष्यति। मध्यप्रदेशस्य भोपालनगरे एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 इत्यस्य आयोजनं प्रचलति। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवः सम्मेलनस्य उद्घाटनम् अकरोत् तथा 870.7 कोटि रूप्यकाणां निवेशेन स्थापितानां 20 औद्योगिक केन्द्राणां शुभारम्भम् अकरोत्। अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं मध्यप्रदेशं देशस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी औद्योगिक केन्द्र रूपेण विकसितुम् अस्ति। सम्मेलनं सम्बोधयन् मुख्यमंत्री अवदत् यत् विगत 12 वर्षेषु भारतं विश्वस्य शीघ्रतम विकासमान देशेषु अन्यतमं जातम्। असौ अवदत् यत् पूर्वं मध्य प्रदेशः केवलं कृषेः कृते प्रसिद्धः आसीत्, किन्तु अधुना राज्ये ड्रोन यानात् आरभ्य प्रक्षेपणास्त्र पर्यन्तं निर्माणं क्रियते। भारत जापान देशौ अद्य स्वतन्त्रं मुक्तं नियमाधारितं च हिन्द प्रशान्त प्रदेशं प्रवर्धयितुं स्वस्य प्रतिबद्धतां पुनः सुदृढीकृतवन्तौ। जापान देशस्य टोक्यो नगरे आयोजिते 8वें रक्षा नीति संवादावधौ उभौ देशौ विद्यमानस्य क्षेत्रीय वैश्विकयोः सुरक्षा पर्यावरणस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। टेनिस क्रीडायां इटली देशस्य यैनिक सिनर इत्येषः जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर जेवेरेव इत्यमुं पराजित्य स्वस्य विम्बल्डन पुरुष एकल उपाधिं यथावदेव धारयति। इति वार्ताः।
2: ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಫ್ಎಂ ರೈನ್ಬೋ 101.3 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಈಗ ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮಾತು ಮಧುರ.

0: ನಂತರ ನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ 9 ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी. व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ. आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया. होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए. भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी. श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो. उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की. श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की. उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया. श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं. भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है. जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की. दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया. रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की. विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की. बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की. वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे. वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है. दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार एन को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है. ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है. अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया. अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनके बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी. 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे. अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है. अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
2: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
1: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
3: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
4: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
5: Provisionally, we're looking at a 10% increase.
6: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
5: अदर ऑपरेटिंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड।
1: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात $232 अरब से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की

0: दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: नागालैंड के चुमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीषा।
0: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ 232 अरब डॉलर से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा।

0: Tech sectors, they showed good performance after a good quarterly result. And that is why you are seeing that the market was almost flat with a rise of 47 points in Sensex and nearly 2 or 3 points in Nifty. It was a flat. Going by the two events of last 2 days, we were apprehending that there will be some further reduction in the Sensex as
1: well
0: as
1: exactly.
0: Nifty.
1: Yeah, so this is a bit of a surprise.
0: But because of this tech blue chip, some of the blue chip techs gave some support to the market, and that is why we are seeing some improvement. But the problem is that we do not know what is going to happen, and the ceasefire which was announced is seems to be over, as announced by both the whether we talk about US or whether we talk about Iran, and that is going to have some impact on the market in this week. So of course, the Monday has started on slightly positive note, but for the next 4 or 5 days, we do not see much relief, kind of thing. There will be more volatility, and more it will be towards the downward
1: and
0: risk.
1: More anxiety because state of Hormuz stands
0: Of course,
1: loose again.
0: we do not know what is happening. Somebody is saying that it has closed down. Somebody is saying no, the ships are still going on, but there are problems which are affecting the moves or the sentiment in the market.
2: तो आपको क्या लगता है शीशे जी बाजार की आज की हालत देख के, हालांकि आखिर में थोड़ा मामूली बढ़त दिखाई दी, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि लगातार ये उथल पुथल चलती रही और ये संकेत यही है कि इसी तरह से आगे चलेगा।
0: बिल्कुल, देखिए आज अगर मैं दो तीन सेक्टर्स की बात करूं जहां पर हमने नतीजे का असर देखने को कह सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि तकनीकी कंपनियों के शेयरों में अच्छे सुधार आए, वही विमानन बाजार की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसमें हमने गिरावट देखी, क्योंकि पश्चिम एशिया में अगर उथल पुथल होता है तो उसका असर हवाई ईंधन के ऊपर पड़ेगा, हवाई ईंधन के दाम के ऊपर पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि कई उड़ानें जो हैं वो दोबारा से रद्द होने की आशंका है, तो इन सब के बीच में विमानन सेक्टर में हमने देखा, विमानन क्षेत्र में हमने देखा कि थोड़ा सा मामला जो है वो बहुत ही थोड़ा नहीं बहुत ही कमजोर था। लेकिन एक अच्छी वही बात जो मैंने कहा कि थोड़ा सा जो हमें सुधार देखने को मिल रहा है वो तकनीकी क्षेत्र में मिल रहा है, और इसके अलावा थोड़ा बहुत हम FMCG सेक्टर में भी जो है वो हम सुधार देख सकते हैं। लेकिन ये पूरे वीक की बात करें, पूरे सप्ताह की बात करें, तो बहुत ज्यादा कोई सुधार की उम्मीद जो है वो हमें नहीं दिख रही है।
1: Alright, now we're joined by Sitaraman from Mumbai. Yes, Sitaraman ji, please ask a question.
3: I hear you. I hear your program occasionally, but one thing I find that you are not prepared to take the responsibility when you give some news or something. You differ. How are you differing? Because there's a budget.
1: All right, I think the voice was not too clear, but anyway, let's move on.
2: एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के बाजारों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 9% की गिरावट के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सूचकांक बन गया। बाजार की गिरावट रोकने के लिए सर्किट ब्रेकर लगाया गया और कारोबार 20 मिनट तक अस्थायी रूप से रोक दिया गया। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 2.1% और जापान का निकेई 1.9% तक गिरा। दूसरी ओर हांगकांग शेयर बाजार के हैंगसेंग इंडेक्स में लगभग 0.2% की तेजी दर्ज की गई। ताइवान का ताइएक्स और सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स दोनों ही सकारात्मक रुझान के साथ स्थिर रहे। शशि जी, जो खास चीज हमारा ध्यान आकर्षित करती है, अगर दक्षिण कोरिया की हम बात करें जहां पर इतनी तेज गिरावट हमें देखने को मिली, और मोटे तौर पर और बाजारों में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति एशिया में हमें नहीं दिखाई दे रही।
0: दक्षिण कोरिया की बात का जिक्र करना यहाँ पे ज्यादा अहम होगा, क्योंकि कुछ समय पहले दक्षिण कोरिया में एक या दो ऐसी कंपनियां थी जिनके शेयरों में काफी तेज उछाल आया था, और उसकी वजह से दक्षिण कोरिया के जो कहते हैं कि बाजार पूंजीकरण जो है वो काफी आगे हो गया था, और ये कहा गया कि दक्षिण कोरिया और ताइवान के शेयर बाजारों की स्थिति देखिए। लेकिन उस समय भी अगर हम लोग अगर उस बात को दोबारा याद करें, तो उस समय हमने इस बात का खास तौर पर जिक्र किया था कि दक्षिण कोरिया हो, ताइवान हो, या ऐसे बाजार हो, इसमें एक या दो या तीन कंपनियां, चार कंपनियां जो है वो बाजार को ऊंचा ले जा रही है, जबकि हमारे यहाँ जो बाजार में स्थिति है कि हम एक विविध बाजार है, हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियां हैं।

0: बहुत सारे क्षेत्र हैं और उन सभी क्षेत्रों का मिला जुला असर देखने को मिलता है। तो अगर एक लंबे समय की प्रवृत्ति की बात करें तो वो दक्षिण कोरिया हो या फिर ताइवान की बात करें या ऐसे बाजारों की बात करें, शायद वहां देखने को नहीं मिलेगा, जबकि भारतीय बाजारों में हमें वो स्थिति देखने को मिलेगी। और वो बात आज काफी हद तक जो है वो सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है।
1: और यहाँ पर हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि आज सोमवार है और हर एक सोमवार की तरह हम श्रोताओं के प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करते हैं। श्रोताओं, आप हमसे फोन करके सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं इन नंबरों पर 2331444 और 2331-0481 और हमारा तीसरा नंबर है 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें।
2: शिशिर, नोइंग द मार्केट्स एट द मोमेंट, एज वी सेड इट रोज बाय 47 पॉइंट्स नाउ एंड स्टिल द मार्केट्स आर वोलेटाइल, नो थैंक्स टू द वॉर सिचुएशन एंड द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड द स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड द एनर्जी थ्रेट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, seeing all this, is this the right time to invest? If somebody wants to invest, what is your overall, how would you analyze? The newcomers should wait and watch, or somebody with a high risk appetite should plunge into the stock market? How would you explain that?
0: So you have mentioned various factors starting from war to crude oil, but one more factor needs to get it, and that is the monsoon. Which has much wider impact because almost our aggregate economy is depending upon this thing. So what I mean to say that at this moment, when any kind of investor who is say a beginning, who is a beginner or newcomer in the market, it would be better if you just wait for some more time, because the volatility is too much, uncertainty is at high level, and even if he wants to invest, the mutual fund route is much better. And mutual fund, not just on the equity one, I would say go on the diversified one. Some part in equity, some part in debt, some part in the hybrid. That will give some more comfort. Entering into the market at this point of time, my advice would be it's not the good time.
2: Don't put all your eggs in one basket, as they say. All right, we're now joined by Ramanathan from Chennai. Yes, Ramanathan ji, please ask a question. Yeah.
3: Yes, good evening,
2: Mark.
3: Yeah. See, I have two questions. Yes, sure. One is, how is this dollar index calculated? And one more question is, with this inflation going up, can we see any interest rate hike with the rate hikes?
0: The first question is about the dollar index. It is basically composition of six foreign currencies, and any kind of changes in those six currencies impact the dollar index. And dollar index gives basically indication about that what is happening in the dollar, what kind of a strength we are going to have. Coming to your second part of the second question, which is about the inflation and the interest rate. Basically, the 4% rate is something which is sometime it is giving an indication. Is it a time for rate hike? I think we will have to wait for at least 2 more months. So that is why the number which we have seen today is more than 4%. That means the median rate of targeted inflation rate has been breached, that 4%, after January 2025. Now the expectation is that for the next 2 or 3 months, it could be in the range-bound manner, but depends upon that how the monsoon covers entire nation and what is the sowing situation. So we are expecting that in the second half of the fiscal, there may be a rate hike, but that will depends upon that what kind of inflation we see in the month of August or September.
1: और महाराष्ट्र से हमारे श्रोता के शुक्ला लाइन पे हैं। शुक्ला जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
4: नमस्कार सभी को, मेरा क्वेश्चन है था कि क्या आज अभी भी गोल्ड का रेट इंग्लैंड में तय होता है इंडिया का भी, और गोल्ड और डॉलर में क्या संबंध?
0: गोल्ड के रेट की जहां तक हम लोग बात करें, कॉमिक्स के आधार पर जो है वो रेट लिया जाता है। और रहा सवाल कि डॉलर उसके मुकाबले में क्या, देखिए डॉलर मजबूत होता है तो उसका जो है वो नकारात्मक असर हमें सोने को में देखने को मिलता है, और डॉलर कमजोर होता है तो सोने के भाव में तेजी आती है।
2: और वी आर जॉइंड बाय विशाल फ्रॉम दिल्ली। जी विशाल जी, सवाल पूछिए।
5: अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं?
0: देखिए आईटी सेक्टर में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि बीते दिनों जो नतीजे आए हैं वो नतीजे अच्छे रहे हैं, एक उम्मीद दे रहे हैं कि शायद आने वाले दिन भी अच्छे रहेंगे। उनका जो कहते हैं ना कि आउटलुक भी जो वो बता रहे हैं उसमें थोड़ी स्थिति बेहतर है। और अगर आप याद करिए तो जो हमारी देश की एक बड़ी आईटी कंपनी उसके उनके चेयरमैन साहब ने ये भी बात कही थी कि जो भी हम एआई की बात करते हैं एआई के लिए भी हमें एचआई और जो ट्रेडिशनल जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से एनविद्या की अगर आप सीईओ की बात को याद करें तो उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था कि जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज हैं उनकी जरूरत बनी रहेगी। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके वजह से आप आईटी कंपनियों में तेजी देख रहे हैं। अब प्रश्न ये कि आने वाले समय में कैसे स्थिति रहेगी, देखिए ये सब कुछ निर्भर करता है कि ये लड़ाई का जो माहौल है उसमें किस तरीके से सुधार होता है। अगर वो सुधार होता है मांग बढ़ेगी और उस मांग का फायदा जो है वो आईटी कंपनियों को देखने को मिलेगा। तो अभी थोड़ा सा ये जो एक दो महीने थोड़े से अभी अनिश्चितता के समय में है, उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो लड़ाई अभी दोबारा शुरू हुई है वो लंबा ना खींचे तो इसका फायदा जो है हमें आईटी सेक्टर्स में भी देखने को मिल सकता है।
2: और जॉइंड बाय तरुण फ्रॉम गुरुग्राम। जी तरुण जी, सवाल पूछिए अपना। जी
5: गुड इवनिंग। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज योर टेक ऑन द डिफेंस ऑफ द करंट सिचुएशन and second part of the question is specifically with respect to keep the yard companies upright.
0: Tarun, as a matter of policy, we cannot discuss name of any company. Any specific stock cannot be mentioned. But sector, you have asked about the defense sector. Of course, defense sector is doing well. And at this moment, I feel that defense sector will have a potential to give a better return.
2: All right, moving on. HCL Technologies today reported its financial results for the first quarter of the current financial year, that is from April to June. The company's revenue increased by 13.9% on an annual basis to 34,579. The company's revenue grew by 1.76% on sequential basis. The company's net profit rose by 3% to 4,624 crore rupees on quarterly basis. The country's third largest IT services company also announced an interim dividend of 12 rupees per equity share.
1: और चलते हैं अगली खबर की ओर। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। इस दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73.45 अरब अमेरिकी डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब अमरीकी डॉलर हो गया। इस तरह इसमें 19% की वृद्धि दर्ज की गई। शिशिर, बहुत ही अच्छी खबर है जिस तरह से हमारा निर्यात बढ़ा है।
0: बिल्कुल, देखिए निर्यात का बढ़ना अच्छी खबर है, लेकिन एक चीज और भी देखिए कि आयात भी बढ़ा है और जिसका असर जो है वो हमारे व्यापार घाटे पर देखने को मिला है। लेकिन अभी के समय में हमें आयात में ये भी देखना चाहिए कि आयात किस चीज का बढ़ा है। अगर कच्चे माल, मशीन, इन सब चीजों का आयात बढ़ रहा है तो वो बुरी खबर नहीं है, बल्कि वो हमारे निर्यात को बढ़ाने में मदद करेगा। तो आयात बढ़ने को लेकर के जब कभी भी हम चर्चा करें तो हमें ये भी देखना चाहिए कि किन चीजों का आयात बढ़ा है। और यदि आयात में इस तरह के सामान हमें देखने को मिलते हैं तो उसको लेकर के हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आने वाले कुछ समय में उसका असर एक सकारात्मक देखने
1: को। जैसा आपने कहा श्रीजी, अलग से हमारे पास आकलन नहीं है, लेकिन वस्तुओं में और सेवाओं में दोनों की दृष्टि से अगर हम देखें तो आयात में भी 26% की वृद्धि हुई।
2: एंड गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क बाय एक्सपेंडिंग इट्स बास्केट बाय आउटसोर्सिंग फ्रॉम आई मीन बोथ इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट।
0: सर्टेनली दैट्स व्हाट आई एम सीइंग, दैट इफ वी आर हैविंग मोर एंड मोर कैपिटल goods in import, more and more API imports are there, that is good for us. So import is not a bad word.
2: Yes.
0: The thing is what

0: ਗਿਆਰੀ
1: ਰਾਈਟ
2: और दिल्ली से हमारे श्रोता रमेश लाइन पे है। रमेश जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
3: मेरा ना क्वेश्चन नेशनल सेविंग शेड्यूल के बारे में है, नेशनल सेविंग शेड्यूल, नेशनल सेविंग स्कीम NSS
2: जी।
3: सर मैंने ना 91 में सर जी 45,000 सर जी पोस्टर्स लगाए थे, तो सर अब वो पोस्टर्स वाले कह रहे थे अपने पैसे निकाल लीजिए क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कीम बंद कर दी है। तो सर मेरे फर्ज से क्वेश्चन ये हैगा सर, जब मैं पैसा निकालू क्या टैक्सेबल सर होगा या नॉन टैक्सेबल रहेगा सर? और सर बजट में ना सर गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था, किसी ने मुझे बताया कि ये गवर्नमेंट बोला या आप निकालेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा इसके ऊपर, सर मैं सर की ओपिनियन जानना चाहता हूँ।
0: देखिए नेशनल सेविंग स्कीम, अब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसको हम लोग NSE के नाम से जानते हैं, वो अब उस रूप में है। आप अगर पैसा निकालते हैं वो टैक्स ऑलरेडी कट गया है। इसका जो सिस्टम होता है जिसको हम लोग कहते हैं ETE, यानी कि जब आप पैसा लगाते हैं उस समय आपको एक निश्चित रकम तक कर में छूट मिलती है, उसके बाद जो उस पे ब्याज जोड़ता जाता है वहां पर टैक्स कटता है। और जब आप पैसा निकालते हैं तो ऑलरेडी चूंकि टैक्स कट चुका है तो वो आपके ऊपर वो एग्जेम्प्टेड होगा, यानी कि उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है।
1: ऑलराइट, वी आर नाउ जॉइंड बाय शंकर फ्रॉम भोपाल। जी शंकर जी, सवाल पूछिए।
4: नमस्ते मार्केट जी। सर मेरा सवाल थोड़ा सा हटके है, ना मार्केट से है ना फाइनेंस से है। सवाल सर है कि हमारे यहाँ बहुत सारा विकास का काम हो रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल में सीवर लाइन डल रही है, सड़कें बन रही है, बट द क्वालिटी ऑफ वर्क इज नॉट अप टू द मार्क बिकॉज ऑफ यू नो जो भी रीजन हो, L1 L2 के चक्कर में सक्सेसफुल किया जाता है और काम और सस्ता होता है, तो इसका क्या, इसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया जा सकता है?
1: Well, I think we can't take that question because we are limiting ourselves to anything which is related to the financial aspect of the country or the markets, right? So this is beyond our syllabus to be honest and to be precise. All right, let's move on with more news. India's retail inflation accelerated to 4.38% year on year in June, breaching the Reserve Bank of India's midpoint target. The June inflation reading was moderately higher than the 3.93% recorded in May. Retail inflation continued to rise for the sixth consecutive month under the new Consumer Price Index CPI series. According to data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, inflation in rural areas edged up to 4.74%, while in urban regions it rose to 3.92%. The food inflation rate based on the All India Consumer Food Price Index stood at 5.32% last month, up from 4.78% in the preceding month. According to the data, the increase in inflation in the previous month was mainly attributed to rising prices in personal care, social protection, restaurants and accommodation services, food and beverages and intoxicants. Your comment on this?
0: See, one factor is that there is a complete pass-through of petrol diesel price hike, and that is being reflected in the inflation number. The second is, of course, precious metal, whether we talk about silver jewelry or whether we talk about gold, diamond and platinum jewelry. In fact, silver jewelry, the inflation rate is 133%, which is not a small number.
1: Absolutely.
0: And the good thing is that the vegetable prices, I mean, especially when we talk about onion and potato, they are in the disinflation, that means they are in the negative territory. But one of the ingredient of our thali, which is ginger, adrak,
1: yes,
0: that is very costly. Jeera, that is also very costly. So some of the food items are costly, some of the food products are costly. So we have the pass-through, then we have the precious metal and some of the food items. So combination of all those three have resulted in the 4.3% of the inflation for the month of June.
1: And we know that there is likely to be less monsoon, you know, as is being predicted by the IMD.
0: That's a bit of a worry. Yeah, that
1: right?
0: is a concern, and that is what we are expecting, that the inflation will be over 4% in the coming months also.
2: Aur hamare shrota Deepak humse jud chuke hain. Deepak ji namaskar, bataiye kya पूछना चाहते
5: हैं। नमस्कार सर।
0: नमस्कार
2: जी, सवाल पूछो।
5: सर ये जैसे मार्केट में मैं ना पहले इंटरडे ट्रेडिंग भी करता था, निफ्टी और इनको ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता था, तो ये गैप अप और गैप डाउन का जो मैकेनिज्म है ये मेरी समझ से बाहर है कि मतलब एक ही नाइट में सेंटीमेंट कैसे चेंज होता है। सुबह सुबह गैप अप होके, जैसे आज ही हुआ था गैप डाउन होकर, शाम तक गैप मतलब फेल हो गया था, तो इतनी जल्दी सेंटीमेंट कैसे चेंज होते हैं सर?
0: तकनीक में समय बहुत कम लगता है, तकनीक जो है वो सूचनाओं को बहुत जल्दी एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाता है। तो जब आप कहते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो जाहिर सी बात है कि रात की घटनाएं सुबह की

0: The Strait of Hormuz. Brent crude was trading 3.4% up at $78.59 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 3.5% up at $73.89 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 1% down at 1,42,610 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.3% lower at 2,20,140 rupees per kilogram a short while ago.
1: और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 1% के गिरावट के साथ 1,42,066 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.3% के गिरावट के साथ 2,19,823 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। शशि जी, आप क्या कहना चाहेंगे सोने के मूल्य के बारे में?
2: देखिए, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महंगाई दर में चांदी की महंगाई दर और सोने की महंगाई दर कितनी है, लेकिन हकीकत यह है कि दैनिक आधार पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर सोने और चांदी दोनों में जो है गिरावट देख रहे हैं, और एक बहुत ही ऊंचे स्तर से गिरावट आई है क्योंकि डॉलर लगातार मजबूत हुआ है, तो वहां पर जो इतनी मजबूती आएगी उसका असर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और दूसरी बात यह भी है कि वैश्विक अनिश्चितता का दौर था, उसके में कहा जाता था कि सोने के भाव बढ़ेंगे, लेकिन इस बार उल्टा रहा है। सोने में उस तरीके की स्थिति देखने को नहीं मिली है। उसकी एक वजह यह भी है कि डॉलर की स्थिति अगर अलग रही है तो उसका असर आपके सोने पर पड़ा है।
1: और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। शशि जी से कार्यक्रम में भाग लेने, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नाउ द हेडलाइंस अगेन, थैंक यू शशि जी। वेल, इन द इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एजेस अप 47 पॉइंट्स, निफ्टी क्लोजेस फ्लैट। India's retail inflation rises to 4.38% in June this year and global crude oil prices rise. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. So from all of us here, goodbye.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

1974 में आई फिल्म रजनीगंधा का आपने ये गीत सुना, सलील चौधरी का संगीत और मुकेश की आवाज, और इस गीत को लिखा योगेश ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम है गीत मेरे मनमीत और मैं हूँ आपके साथ ऋतिका।

0: तो दोस्तों गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। राखी आ चुकी है निशिगंधा कार्यक्रम लेकर। छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध के मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं।

0: ओमान के पास हॉर्मूज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मूज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा। अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। वियतनाम के फूकोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने बताया कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने आगे बताया कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 6 अभी लापता हैं। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम 2026 आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी उपस्थित रहेंगे। संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा शोध, नवाचार और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करना है। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by RS Raghu. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with U.S. Trade Representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal yesterday began his official engagements in Spain by meeting First Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewelry, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods and rice. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives following a boat capsizing.

वक्त हुआ है 12:11 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूँ राखी आपके साथ।

थक गए हैं? अरे जनाब, अभी तो सोमवार बीता है, पूरा हफ्ता बाकी है। जोश बनाए रखिए, मुस्कान सजाए रखिए, क्योंकि मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो सफर का आखिर तक साथ निभाते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद

कभी कभी जिंदगी की भागदौड़, काम का दबाव और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां चेहरे की मुस्कान कहीं छिपा देती है, लेकिन यकीन मानिए, मुस्कुराहट से खूबसूरत कोई गहना नहीं होता। तो अगर आज कोई आपसे कह दे मुस्कुराइए ना, तो बुरा मत मानिए, शायद वो आपकी मुस्कान की अहमियत जानता हो। यूं किसी शायर ने नहीं कहा कि मुस्कुराता हुआ चेहरा हर दिल को अपना बना लेता है।

0: गोलमाल फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीतबद्ध किया आरडी बर्मन ने। जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो कभी ठहरती नहीं, हर पल आता है, अपनी कोई याद, कोई एहसास, कोई मुस्कान दे जाता है और फिर चुपचाप आगे बढ़ जाता है। इसीलिए जो लम्हा इस वक्त आपकी मुट्ठी में है उसे खुलकर जी लीजिए। अपनों के साथ बिताया गया एक छोटा सा पल भी उम्र भर की याद बन सकता है।
1: मुट्ठी सबके

वक्त हुआ है 12:34 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा, मैं हूँ राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

जुर्माना फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जिंदगी की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर दिल में उत्साह हो और होठों पर कोई प्यारा सा गीत हो तो सफर भी आसान लगने लगता है। संगीत की यही खूबी है, ये थके हुए कदमों में भी नई ऊर्जा भर देता है, मुस्कुराने की वजह दे देता है और महफिल का रंग ही बदल देता है।

बिन फेरे हम तेरे फिल्म का गाना आपने सुना। रफी और उषा खन्ना की आवाज में असद भोपाली ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया उषा खन्ना ने। दोस्ती का रिश्ता उन अनमोल रिश्तों में से एक है जिसे न किसी नाम की जरूरत होती है और न किसी शर्त की, बस थोड़ा सा अपनापन, थोड़ा सा विश्वास और साथ निभाने का वादा। यही इसे उम्र भर के लिए खास बना देता है। जिंदगी के सफर में ऐसे दोस्त मिल जाए जो हर खुशी में मुस्कुराएं और हर मुश्किल में साथ खड़े रहे तो राहें आसान लगने लगती है।

नमक हराम फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, मगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी यादें वक्त के साथ और भी गहरी हो जाती हैं। वाकई जब कोई जुदा होता है तो दिल पर यादों के तीर चलते हैं। हर धड़कन जैसे किसी पुराने पुराने लम्हे को पुकारती है। हर खामोशी किसी अधूरी बात का एहसास दिलाती है। शायद इसी एहसास का नाम मोहब्बत भी है, जो जुदाई के बाद भी दिल से कभी जुदा नहीं होती।

बेताब फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। वक्त हुआ है 12:58 और ठीक 18 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचार के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट पे श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने बताया कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीरों को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं जबकि 6 अब भी लापता हैं। देश भर में वन्य जीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने 33 तस्करों को गिरफ्तार किया है। DRI ने इस अभियान में 440 संरक्षित और लुप्त प्राय वन्य जीवों को बचाया और करीब 15 किलोग्राम हाथी दांत तथा उससे बनी वस्तुएं जब्त की हैं। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 186 रन पर सिमट गई। क्रांति गौड़ को 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal yesterday began his official engagements in Spain by meeting First Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewelry, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods and rice. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives following a boat capsizing in West Bengal's South 24 Parganas district. In a social media post, the President said her thoughts and prayers are with the affected families. Expressing condolences to the bereaved families, the Vice President prayed for the speedy recovery of those injured. In a social media post, Mr. Modi said his thoughts are with the bereaved families and hoped for the speedy recovery of those injured. He also announced an ex gratia payment of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. Decomposed bodies of the 9 fishermen who lost their lives due to the capsizing of a boat off the coast of West Bengal in the Bay of Bengal have been kept at Kathapukur Morgue in South

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूँ आपके साथ।

ताजमहल फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। कुछ चेहरे तस्वीरों में बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई तस्वीर, कोई आईना या चंद लफ्ज पूरी तरह बयान नहीं कर पाते। उनकी मुस्कान की मासूमियत, उनकी नजरों की गहराई और उनकी मौजूदगी की रौनक सिर्फ महसूस की जा सकती है।

भारतीय फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में, मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई मिसाल ही नहीं मिलती। फूलों की नजाकत, चांद की चांदनी, सुबह की पहली किरण या बाहर की ताजगी, सब कुछ कम पड़ जाता है जब दिल किसी की अदा, मासूमियत और हुस्न का कायल हो जाए, तो अल्फाज भी ठहर से जाते हैं।

दिल दिया दर्द लिया फिल्म से आपने गाना सुना रफी की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। मोहब्बत हर बार मंजिल तक पहुंचा दे।

0: ऐसा जरूरी नहीं। कभी यही इस एहसास इंसान को इतनी गहरी चोट दे जाता है कि जिन लफ्जों से कभी जिंदगी बसती थी वही लफ्ज अजनबी लगने लगते हैं। दिल टूटता है तो शिकायत किसी एक शख्स से नहीं रहती, बल्कि कभी कभी मोहब्बत का नाम भी दर्द का दूसरा नाम बन जाता है।
1: न झटके ज़ुल्फ़ से

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का

प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:29 और ठीक 15 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूँ राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

गूंज उठी शहनाई फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। भरत व्यास ने इसे लिखा और संगीत दिया वसंत देसाई ने। कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। दर्द जब शब्दों का सहारा लेता है तो कुछ इस तरह की ही धुनें बनती हैं जो अमर हो जाती हैं। एक टूटा हुआ दिल, बिखरे हुए अरमान और बिछड़ने की कसक।

असली नकली फिल्म का गाना आपने सुना लता और रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। प्रेम का सबसे सुंदर रूप शायद वही है जहां शिकायतें भी हों, रोटना मनाना भी हो, लेकिन साथ निभाने का वादा सबसे बड़ा हो।

काला पानी फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने। इश्क जब अपनी हदें पार कर जाए तो होश और बेखुदी का फर्क मिट जाता है, फिर दिल बस उसी का नाम लेता है जिसकी याद हर सांस में बसी हो।

फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। इंतजार का हर पल उम्मीद से भरा होता है। जब दिल किसी अपने को पुकारता है तो उसकी सदा में दर्द भी होता है और मिलने की आस भी। आंसू बहते बहते जब गम भी थक जाए तब दिल से यही गुजारिश होती है, आ जा रे अब मेरा दिल पुकारा।

प्यासा फिल्म का गाना आपने सुना गीता दत्त की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने। कभी कभी मोहब्बत को इजहार के लिए बड़े बड़े अल्फाज नहीं चाहिए होते, बस एक नजर, एक मुस्कान या तो अनकहे शब्द, और दिल अपनी कहानी खुद लिखने लगता है।

उड़न खटोला फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद अली ने। मोहब्बत का सफर जितना हसीन होता है उतना ही नाजुक भी। यहाँ हर मोड़ पर उम्मीदें हैं, सपने हैं, तो कभी कभी इम्तिहान भी। इसलिए इस राह पर कदम बढ़ाइए तो दिल संभाल कर, क्योंकि एक छोटी सी आहट भी उम्र भर की याद बन सकती है।

वक्त हुआ है 1:53 और 40 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म से आपने गाना सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया इस बर्मन ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध के मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा और निराधार तथा भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने बताया कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने आगे बताया कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वे कजाकिस्तान के बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोस कोस्मोस के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। अनिल मेनन के साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकिना भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज तीसरे नमस्ते दिवस का आयोजन करेगा। ये मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के शुभारंभ के 3 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। मंत्रालय ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के रविंद्र सदन में दिव्या कला मेले के साथ आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि नमस्ते दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। इनमें सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारी, कचरा बीनने वाले और मैला ढोने वाले शामिल हैं।

हुआ है 2:11 और ठीक 2 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई मैं हूँ राखी आपके साथ संगीत रातों को सुरमई बना देता है और सुरमई रातें दिल के एहसासों को और भी गहरा कर देती हैं

जूली फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। जी हाँ, ये रातें आते जाते कहती हैं ढेर सारी कहानियां। चांद उसकी जुबान बन जाता है और सितारे उसके अल्फाज। बस सुनने वाला दिल चाहिए, हर खामोशी में एक दास्तान मिल जाती है।

घर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। कभी कभी किसी की आंखों में ऐसे राज छिपे होते हैं जो लफ्जों से बयान नहीं हो पाते, बस एक नजर दिल तक उतर जाती है और एहसासों की खुशबू देर तक साथ रहती है।

0: पिया का घर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:29 और ठीक 12 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूँ राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

दो रास्ते फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मेरे नसीब में दोस्त तेरा प्यार शायद कभी लिखा ही नहीं था, मगर इतना जरूर लिखा था कि तेरा साथ, तेरी यादें और तेरा एहसास उम्र भर मेरे दिल के किसी कोने में महफूज रहेंगे। कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, लेकिन उनकी खूबसूरती कभी कम नहीं होती।

आपकी कसम फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसका संगीत दिया और इसे लिखा आनंद बख्शी ने। जिंदगी के सफर में कुछ मुकाम ऐसे भी आते हैं जो एक बार गुजर जाएं तो फिर कभी लौट कर नहीं आते। वक्त आगे बढ़ जाता है लेकिन उन लम्हों की महक, उसकी कसक और उनकी यादें उम्र भर दिल के किसी कोने में जिंदा रहती है।

थोड़ी सी बेवफाई। फिल्म से आपने ये गाना सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। शायद यही सच्चे रिश्तों की पहचान है, जहां शिकायतें भी मोहब्बत से की जाती हैं और खामोशियां भी वफादारी निभाती हैं।

गुलामी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 17 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही पंकज गोस्वामी के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

अर्थ फिल्म से आपने नज्म सुनी जगजीत सिंह की आवाज में। इसे कैफी आजमी ने लिखा और संगीत दिया कुलदीप सिंह ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतरिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान के वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वे कजाकिस्तान के बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोस कोस्मोस के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। अनिल मेनन के साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकीना भी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव 2027 के अंतर्गत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के लिए उद्योग आधारित चुनौतियों के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में रचनात्मक प्रतिभाओं की पहचान करके उन्हें प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना है। विजेताओं और उनके कार्यों का प्रदर्शन वेव्स 2027 के दौरान आयोजित क्रिएटोस फेयर में किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि प्रस्ताव जमा करने और चुनौतियों के चयन के लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े इच्छुक संस्थान 31 जुलाई तक wavesbazaar.com पोर्टल पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज तीसरे नमस्ते दिवस का आयोजन करेगा। ये मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के शुभारंभ के 3 पूरे होने का प्रतीक है। मंत्रालय ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के रविंद्र सदन में दिव्या कला मेले के साथ आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि नमस्ते दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में आज से 3 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम 2026 आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगी। इसका उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना है। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, आयुष शेट्टी और पीवी सिंधु जैसे भारतीय

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर टाइम हुआ है रात के 3:10 और अब शुरू होता है कार्यक्रम हमराही और मैं हूं पंकज आपके साथ और दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूं। अभी के लिए शुरुआत करते हैं वारिस मूवी के इस गाने के साथ।

उषा खन्ना का म्यूजिक और इंदिवर के बोलते। 14 जुलाई की इस आधी रात में मेरे यानी पंकज के साथ हमराही शो सुन रहे हैं आप सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। और इस पूरे घंटे हम सुनेंगे पुराने डुएट्स गाने। इन गानों को सुनकर रहना, मन की थकान मिट जाती है, क्योंकि मन खुश तो सब खुश। तो इन दो गानों के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। अभी के लिए सुनिए हीरो फिल्म का गाना मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में, और फिर मैं मिलता हूँ आपसे इन गानों के बाद।

देगा, वो इतनी खुशी आपको दे देगा कि मेरा ऐसा लगे यार जब इतना एक बंदा मेरे पास है तो मुझे हजारों की क्या जरूरत है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई है तो सच में बहुत अच्छा नसीब है आपका।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखिए, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

एक बात है ना, आप अच्छे से मान लीजिए कि जिंदगी जो है एक प्यारे से रिश्ते के बिना चलानी बहुत मुश्किल है, इसलिए रिश्ते कमाइए। पैसे तो खैर हम सब कमा ही रहे हैं, लेकिन रिश्ते अगर अच्छे हो, एक यही रिश्ता अगर अच्छा हो तो सारी खुशियों की वजह बन सकता है। बाकी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर अब हमारा ही शो का समय जो है पूरा होने वाला है। सुबह 4 बजे से हिंदी और इंग्लिश में आप समाचार सुनेंगे और फिर सुबह 4:10 पर अगला शो होगा अरुणिमा। मैं पंकज आपके साथ फिर से उसी शो में मिलूंगा। तो अभी इन गानों का मजा लेते रहिए और गानों के बीट्स पर झूमते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा कर रहे हैं। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वे कजाकिस्तान के बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोसकोस्मोस के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। अनिल मेनन के साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकिना भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2027 के अंतर्गत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के लिए उद्योग आधारित चुनौतियों के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में रचनात्मक प्रतिभाओं की पहचान करके उन्हें प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना है। मंत्रालय ने बताया कि प्रस्ताव जमा करने और चुनौतियों के चयन के लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े इच्छुक संस्थान 31 जुलाई तक wavesbazaar.com पोर्टल पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज तीसरे नमस्ते दिवस का आयोजन करेगा। ये मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के शुभारंभ के 3 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। मंत्रालय ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के रविंद्र सदन में दिव्य कला मेले के साथ आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि नमस्ते दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम 2026 आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और ओडिशा में बिजली के साथ तेज हवाओं के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely

सुबह के 4:10 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है कार्यक्रम। अरुण मैम और मैं पंकज हूँ आपके साथ, तो इन दो गानों के बाद आपसे मैं मिलता हूँ और अभी शुरुआत करते हैं इस गाने से। जहरीला इंसान फिल्म का नाम है और किशोर कुमार की आवाज़ है।

जी और नितिन लोकेश की आवाज में मेरी जंग फिल्म से ये गाना था। इस मूवी के लिए नूतन जी को और अमरीश पुरी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और बिल्कुल सही मिला था। अरुणिमा शो में मैं हूँ पंकज आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के फिल्म गोल्ड चैनल पर। जिंदगी एक जंग तो है ही, लेकिन इसे धैर्य, मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी के बलबूते पर जीता जा सकता है, क्योंकि सत्य ही हमेशा जीतता है। 14 जुलाई मंगलवार की छोटी सी सुबह हो चुकी है और इन दो गाने के बाद मैं आपसे फिर से मिलूंगा और कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस यही स्टूडियो की कुर्सी पे बैठकर आपके साथ गाने सुन रहा हूँ। आप उधर गाने सुनिए, मैं इधर गाने सुन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखिए, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

गाना जो है वो एक तरह से आई ओपनर का काम करता है, क्योंकि हमें मिले हुए पदार्थों का जो है अहंकार हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि बस ये चीज़ जो है हमारे पास है और हम ही इसके मालिक हैं। लेकिन फिर उसके बाद याद आता है कि ये सब तो एक दिन यही रह जाएगा। इंसान का शरीर जो है वो पंच तत्व में जाता है और रह जाती हैं सिर्फ यादें। हमारे कर्म ऐसे हों कि कोई हमें याद करे ना तो प्यार से याद करे और हमारे बारे में अच्छा बोले, कोई आपके जाने पर दुखी ना हो, मतलब कि कोई खुश ना हो कि नहीं भाई वो अच्छा हुआ वो चले गए। नहीं नहीं, होना तो ये चाहिए कि लोग आपके बारे में अच्छा बोलें और ये कहें कि हाँ दुख तो हुआ वो गए हैं लेकिन जहाँ भी वो खुश है। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर अरुणिमा शोभे, मैं हूँ पंकज आपके साथ। ज़िंदगी में खुशियाँ मिले ना तो उन्हें ज़रूर बांटें, क्योंकि इससे खुशी

0: 4:45 कर 41 मिनट हो चुके हैं और गाइड मूवी का ये गाना लता जी की आवाज में था, एसडी बर्मन का संगीत और शैलेंद्र के बोल थे। ये मूवी हमने देखी ही है लेकिन बार बार इस फिल्म को देखने पर पता है जीवन के कई सूत्र हमें पता चलते हैं। एक सूत्र तो यही है कि जिंदगी में सुख और दुख जो है वो भोगने ही पड़ते हैं और चाहे जो हो। लेकिन न्यूज़ में कई बार हम देखते हैं कि कई लोग जो हैं वो दुखों से हार जाते हैं और अपना नुकसान करते हैं। ये बहुत गलत बात है। मैंने शो की शुरुआत में भी कहा था कि जिंदगी की जंग को जो है हम धैर्य, मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी से जीत सकते हैं। बुरा समय अच्छा समय अपने पीछे छुपा कर लाता ही है और वो जो बुरा समय होता है वो एक तरह से हमारी परीक्षा होती है। चुपचाप सहकर परेशानियों को पार पाने दीजिए और फिर खुशियों का सूरज सामने चमकता दिखेगा। अरुणिमा सुनते रहिए, मैं पंकज सिर्फ आपके लिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।
1: संग रहे ना कोई।

जुलाई बारिश का मौसम है और घर से अगर आप बाहर जाएं तो छोटा छोटा बैग में हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि धीरे धीरे सुबह जो है वो तेज हो रही है। और अभी मैंने स्टूडियो की खिड़की से देखा तो मुझे सामने जो सड़कें हैं ना वो गीली गीली नजर आई है, इससे मैंने अंदाजा लगाया कि बारिश हुई है। और ऐसे भी छोटी छोटी बूंदों का मुझे कुछ दिख रहा है तो वहां से मुझे लग रहा है कि बारिश अभी दिल्ली में हुई है। खैर, अगले शो भोर सुहानी में मैं पंकज आपसे मिलूंगा और अभी के लिए अरुणिमा शो के ये बचे हुए गाने सुनिए। फिर सुबह 5 बजे आप हिंदी और अंग्रेजी में न्यूज सुनेंगे और उसके बाद फिर 5:10 पर मैं पंकज भोर सुहानी में आपके लिए

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री

0: मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर रहने का आकलन है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वैश्विक शांति सुरक्षा और समता मूलक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत का शांति दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र के लगभग 50 शांति मिशनों में करीब 3 लाख शांति सैनिक भेज चुका है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 10 मिशनों में 4,300 से अधिक भारतीय कर्मी तैनात हैं। उन्होंने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज जल डमरू मध्य से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान के जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करेगा। साथ ही ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीका के फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि अमरीकी सेना को मदद देने वाले किसी भी देश को युद्ध में शामिल माना जाएगा। अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर लागू करने की घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। 15 भारतीय पर्यटकों के शव स्वदेश लाए गए हैं। इन भारतीय पर्यटकों की वियतनाम के फुकवॉक द्वीप पर स्पीड बोट की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई पहुंचे। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने वाली एक नाव बंगाल की खाड़ी में पलट गई। इसमें 9 मछुआरों की मौत हो गई है और 6 अन्य अभी भी लापता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ द 15 इंडियन टूरिस्ट्स हु वर किल्ड इन अ स्पीड बोट एक्सीडेंट ऑफ वियतनाम्स Phu Quoc Island have been brought back home. The Embassy of India in Vietnam has said in a social media post that mortal remains departed from Ho Chi Minh City by Vietnam Airlines flight and arrived in Mumbai. A speedboat carrying 32 Indian tourists and 4 local crew members capsized off Phu Quoc Island in Vietnam on Friday, leaving 15 tourists dead. 16 survivors have also returned to India and one tourist remains hospitalized in Vietnam. A fishing trawler that had gone missing off the West Bengal coast earlier this month has been found capsized in the Bay of Bengal, with 9 fishermen confirmed dead and 6 persons still missing. The trawler had 15 fishermen on board. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the tragedy. They convey

सुबह के 5:10 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है मेरे यानी पंकज के साथ भोर सुहानी शो। दो गाने के बाद आपसे मिलता हूँ और रामलखन फिल्म के इस गाने के साथ इस शो की शुरुआत करते हैं।

बीत गया वो एरा जब ऐसे गाने बनते थे, सुनकर ही मतलब मजा आ जाता है। बेटा फिल्म से उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज थी, आनंद मिलिंद का म्यूजिक और समीर के लिरिक्स थे। और बहुत ही हसीन सुबह हो गई है, मतलब इससे भी ज्यादा तो अच्छा मौसम हो गया, थोड़ी सी बारिश हो गई है दिल्ली में और मौसम तो सच में इतना प्यारा हो गया है, मतलब स्टूडियो की खिड़की से देख रहा हूँ वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। 14 जुलाई का आज मंगलवार है और मंदिरों में आज स्पेशली भगवान के दर्शनों की भीड़ होती है और दिल्ली में भी बहुत फेमस टेंपल्स हैं और ट्यूसडे को भी मतलब काफी भीड़ लगती है मंदिरों में, पूरी रौनक। हमारे देश की राजधानी दिल्ली की जो है वो बात सबसे अलग है, यानी फुल ऑफ लाइफ। अब ये शहर है ही ऐसा। वैसे हाँ बारिश हो चुकी है थोड़ी सी और बारिश का मौसम है और बाकी बहुत अच्छा मौसम है और आज मंगलवार है, बहुत सारे लोगों को अपने ऑफिस के लिए दुकान के लिए निकलना होगा, तो आप बाहर निकलें तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि अम्ब्रेला आपके पास जरूर हो ताकि अगर बीच में बारिश आ जाए तो आप भीगे नहीं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं पंकज हूँ आपके साथ, शो का नाम है भोर सुहानी। सुबह के 5:23 इन दो गाने के बाद आपसे फिर मिलता हूँ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखिए, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।